पर असी नाम दा स्वाद छड के रसा कसा विच फस गए, अहंकार विच फस के दुख पाए। ए दुख तेरे भेजे हुए नहीं, ए साडे अपने ही सहेड़े।

ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राख है निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव राई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखे ताकि गत मित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को पूना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दे दिस पर घटाया नीकी कीरी मैं कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटते आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन कल्त भोपात किसके कर्तव्य बिरथे जात मारे न राख है अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडानी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत इहो मन तन तृपिए नाम तन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट आया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जहवा दिन रात प्रभ अपने जन की दात करे भगत आत्म कह चाये प्रभ अपने से रहे समाय जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म बिछाने जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्स सब पाप मिठावे अवर सयान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी।

पर फिर भी उस मालिक अग्गी अरदास करदा ऐ मेरे मालिक कोई गल नहीं जे मेरिया लत्तां नहीं हैं ते मेरे हथां नूं सलामत रखी किवें ना किवें।

मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा भला फिर होर दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तुरे बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा गलत गल्लां विच निंदा चुगली विच गलत खेडां विच गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे वो मित्र नहीं दुश्मन है, क्योंकि जो कर्म असी करने ने उनका फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नूं ऐस नहीं अगले जन्म नूं साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाने, ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया है जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे सुने सुनावे उहनूं असीं मित्र समझ रहे हां। हालांकि साहिबां ने पावन

घर की नार बहुत हित जांच्यो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियांदा है। चंगे तो चंगा बस्तर कितने भी कूड़ कुशत गुनाह करने पैन घर वाली नूं खुश करन लई ए सब कुछ करदा है, पर जदों विपता पै जावे तां घर वाली भी मुख मोड़ जांदी है। हजूर दी बाणी कह रही है कि घर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर भागी। ए झूठा व्यवहार झूठियां प्रीतां संसार दियां, हजूर कहंदे ने इथों तक भी नहीं निबदियां, दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई, किथे कोई तेरी सहायता करेगा। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना साक भी भज जांदे हन जदों मुश्किल बन जांदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हन।

छोटे बच्चियां नूं उन्हां मावां दे सामने मारना, उन्हां दे छोटे छोटे टुकड़े करके जिवें कोई फुल्लां दा हार बनांदा है, बच्चियां दे टुकड़े करके उन्हां दा हार बना के मावां दे गल विच पा देना ते नाले कहना मुसलमान बन जाओ, नहीं ते तुहानू भी इसे तरह खत्म कर दिता जाएगा। पर तन हन ओ गुरु के सिंह, गुरु कियां सिंघणियां जिन्ना जान ते दे दिती पर धर्म ना हारिया। ए जुलम हो रहा सी पर गुरु के सिंह कदी जुलम तू घबराई नहीं। उस वक्त दी इतिहासक बोली के गुरु के सिंह

तो ज्यों ज्यों सानू वढ़ रहे हैं असी खत्म नहीं हो रहे सगा होर वधे जा रहे हैं। तू एक दिन जरूर मर जाएगा पर गुरु के सिंह कदी खत्म नहीं हो सकते। क्यों कि सच वास्ते लड़दे ने इंसाफ वास्ते अपने वास्ते नहीं।

सताए हुए हिंदुस्तान दे लोग जिहड़े गुरु साहिबां नूं पसंद करदे सन उन्हां विच मुसलमान भी सन जिहड़े मुगल हकूमत दा जुलम पसंद नहीं सन करदे। ओ सारे लोग गुरु साहिबां दा हमेशा साथ दिंदे रहे ने जिहड़े इंसानियत नाल प्यार करदे ने, क्योंकि गुरु साहिबां दा इहो ही मकसद है, रब एक है। ओनू किसे नाम नाल याद करो।

लोग बड़े दूर चले गए। गुरु ने खालसे नू अपना स्वरूप दिता है ते ना लिखे जदू तक खालसा खालसा रहेगा।

संता महापुरुषा वाला भगता गुरमुखा वाला पर ना भगत ने ना गुरमुख ने ना सिख ने ना खालसे ने सिर्फ पहरावे दे नाल कोई इंसान गुरु की खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी गल नहीं किस दुनिया विच संत महापुरुष गुरमुख नहीं है। गुरमुख भी है ने भगत भी है ने महापुरुष भी है ने खालसे भी है ने पर बहुते धर्म तो दूर गुरु तो दूर दुनिया नू धोखा देंदे ने महापुरुषां दे जीवन

असलियत वाला जीवन नकला भरिया जीवन नहीं, अंदरू होर बाहरू होर जिहो जिहा जीवन होवेगा ते कौम नूं हमेशा औकड़ां दा सामना करना पवेगा। जगह जगह सिर ना चुकाओ, वखरे वखरे राह

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र शब्द के विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आया। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

वस्तु काया दे अंदर है, अते जेड़े काया दे अंदरों उस वस्तु नू नहीं पहलदे, नहीं ढूंढदे, कहिंदे हो अति मूढ़ हन, अति मूर्ख हन, अते बेताले, उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई भी सही चाल नहीं, बेताल लोग हन, मूढ़ लोग हन, मूर्ख लोग हन। सो इस स्टैंडर्ड दे नाल, इस मेजरमेंट दे नाल, इस गेज दे नाल सारी सोसाइटी मूर्ख बन जाती है, क्योंकि बाहर पहलदी। सुगुरु बाबा जी की तालीम सानू समझा रही है कि इस जन्म दे विच तुसी कुछ पाण लई आए सी, अते ओ जो वस्तु है ओ तुहातों दूर नहीं। अगर तुहाडा कुछ भी जिंदगी च नुकसान हो गया है, कुछ भी तुहाडा खो गया है, नो मैटर हाउ मच यू फील दैट यू आर ए एब्सोल्यूटली फेल्यूअर, स्टिल वो जो पाउण वाली वस्तु वो तुहाडे अपने ही पास है, वो तुहाडे अपने अंदर है। सो तुसी कुछ भी खोया नहीं है, डिप्रेस होने की, होपलैसनैस च जाने की तुहाडे लिए कोई गुंजाइश नहीं छड़ी, क्योंकि अखीरले दम तक वो वस्तु जो तुसी पानी सी वो तुहाडे अपने अंदर, अखीरले दम तक जदों चाहो उस पासे नूं अपनी डायरेक्शन तब्दील कर सकते हो। सो अगर असीं स्पष्ट तौर ते इतना ही गुरु बाबे दा उपदेश समझ लईए ते उस नूं धारण कर लईए कि असीं इस जन्म दे विच कुछ पाण आए सी, अते ओ वस्तु जो पाण आए सी ओ साडे अपने अंदर है। हुण इह सवाल सानू पुछण वाला है कि असीं अपने अंदरों कुछ लभ्या है जां नहीं लभ्या। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं लभ्या तो फिर असीं चाले मूल गवाए, फिर असीं सब कुछ खो के इत्थों जाण वाले लोग हां। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं पाया, नहीं खोजिया, तो फिर असीं अंधले लोग हां। तो गुरु बाबा जी फिर सानू देख के हैरान होके ये शब्द उचार के इस तरह गायन करते हैं, अंधले क्या पाया जागाए, ऐ अंधे इंसान तू जगत च आके की पाया है, आओ सारे नाले गाओ, नाले अपने अपने अंदरों अपने अपने आप नू ये पुछो कि वस्तु जड़ी मैं पाउनी सी महाराज दसते हैं वो मेरे अपने अंदर ही है, उसनू मैं अपने अंदरों पाया है या नहीं पाया, जे नहीं पाया तो मैं की कर रहा हाँ, की करदा रहा हाँ, ते अग्गे नूं हुण मेरा की विचार है। आओ प्यार नाल

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी, उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच वो थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ये की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, और साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि ते उसनु भी मान के देख। अपनड़े घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे हन

कहिंदे कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वह परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए तो उसनूं भी पता नहीं चलता, बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनूं भी कोई पता नहीं चलता की किया गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं लियाएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, असि फिर भी राम ना बैठे रहिए? वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लईयां सुन लईयां फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हो, जिंदगी उस तरह की ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी ओ पाया है जा नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसको खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, श्रृंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाल, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवा नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ये जिहड़ी देही है ये घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है। अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इसनु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हैं। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धोई फिरदियां हन, ओ खिची फिरदियां हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिरदी है, धोई फिरदी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, ओ उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसी खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनु अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इसनु उस पासे वल जान नु वरतो जिस पासे वल जान नु तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नु जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनु पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नु विगड़न ना दियो कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दी आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नु वेस्ट ना करो, इसनु गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनूं मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नूं बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनूं बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जांदी, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोलो, तो ये पंक्ति आप नूं याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ, ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

अगर तू उसनू नहीं पाया तो फिर हाले तक तू की कर रहा है। फिर कहते हैं तू की पाया है इस जगत दे विच आके, अंतले क्या पाया जग आए। समा भी समाप्त है, प्रेम नाल सारे गाओ। अते हुण इस विचार दा जो कंडा चुभना चाहिदा है, जे नहीं चुभदा, यह सानू नहीं साडे अंदर कोई टर्मोइल ल्यांदी, साडे अंदर नहीं सोच विचार पैदा करदी, फिर इसका अर्थ यह है कि असी किसी ना किसी नशे के अधीन हाँ, कि सुन के भी साडे उत्ते असर नहीं होंदा। प्यार नाल

कर दे हाय हाय। ये मत समझ पाप दा बीज बोना तो बड़ा सौखा है, आ जदों किकर दा बीज वेखिए तो बड़ा मखमल वर्गा बड़ा कूला होंदा बड़ा सोहना होंदा, पर जदों बीज बोईए तो जेड़ा फिर पौधा उगदा वो कंडिया दा भरिया होया, जिथे हथ लाएगा कंडे ही कंडे हैं। पाप दा बीज तो बड़ा प्यारा लगता पहला, पर जदों प्रफुल्लित होंदा ही फिर ये जीवन नूं कुंभी नरक बना देंदा है। इसलिए हजूर कहिंदे हन पापां तों डर, कोई चंगा कर्म करना है तां उसे वेले कर लै, जे मन विच फुरना होया किसे पाप करन दा तां सोच उस नूं देरी पा। हो सकदा है कोई तेरा चंगा कर्म तेरे सामने आवे तू पापां दे रस्ते तों हट जावें, इसलिए कह रहे

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट